सम्माननीय सदस्य हरू, सम्माननीय सभामुखजू, सम्माननीय अध्यक्षजू,